0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, और देखो नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ तावुन ना करो, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अजाब सख्त है। सूरह मायदा।
2: FM 100.

0: FM
1: 100. It's 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। राब्तों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम राब्तों को पैगाम भेजें, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, बराह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरख्वास्त को नजरअंदाज करें। इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉलो करें। सेटिंग्स, अकाउंट, 2-स्टेप वेरिफिकेशन या 6 हिंसों का पिन सेट करें जो सिर्फ आपको याद हो। ईमेल एड्रेस जरूर शामिल करें। ईमेल शामिल करने से पिन दोबारा सेट हो सकता है। अकाउंट तेजी से फॉल हो जाता है, हैकिंग के इम्कान कम हो जाते हैं। तस्दीकी कोड कभी किसी के साथ शेयर न करें, चाहे पैगाम दोस्त का हो या किसी अदारे के नाम से हो। कोड शेयर करना सीधा अकाउंट हैक होने के बराबर है। जाली लिंक्स और ऑफर से बचें। मुफ्त इंटरनेट इनाम, सरकारी या बैंक के जाली पैगाम से होशियार रहें। ऐसे लिंक्स पर क्लिक न करें। व्हाट्सएप लिंक डिवाइसेस चेक करें। सेटिंग्स, लिंक डिवाइसेस, अगर कोई नामालूम डिवाइस नजर आए तो फौरन लॉग आउट करें। फोन लॉक और बायोमेट्रिक इस्तेमाल करें। अगर फोन महफूज नहीं होगा तो व्हाट्सएप भी महफूज नहीं रहेगा। पिन, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर फॉलो करें। याद रखें, व्हाट्सएप हैकिंग कोई तकनीकी जादू नहीं बल्कि ज्यादातर इंसानी गलती की वजह से होती है। थोड़ी सी आगाही और एहतियात से आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं और अपने दोस्तों को नुकसान से बचा सकते हैं।
3: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: MCB बैंक फॉर लाइफ
0: एंड
6: आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
0: And
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: And
8: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।

0: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
0: MCB बैंक फॉर लाइफ
1: एंड
2: आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
1: एंड
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: एंड
4: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैज कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैज कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज कैश है ना।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय MCB बैंक फॉर लाइफ एंड
3: आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
2: एंड
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: एंड
5: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय MCB बैंक फॉर लाइफ एंड
3: आज ही हायर मिनी LED टीवी लाइन और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
2: एंड
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: एंड
5: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा

0: जब मेरी तरह।
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय MCB बैंक फॉर लाइफ एंड
3: आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
4: एंड हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
5: एंड हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर

0: This program was brought to you by MCB Bank for Life and
1: Ajhi Higher Mini LED TV Line और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं
0: एंड
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: एंड
3: हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, काफिरो अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे पास फैसला आ चुका, अगर तुम अपने अफाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, और तुम्हारी जमात ख्वाह कितनी ही बड़ी हो तुम्हारे कुछ भी काम न आएगी, और अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो जबकि तुम सुनते भी हो, और उन लोगों जैसे ना हो जाना जो कहते हैं हमने सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। सूरह अनफाल।
2: FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
2: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: MCB बैंक फॉर लाइफ
4: एंड
5: आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।

0: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
1: किसने कहा था पैसे बचा।

0: This program is brought to you by MCB Bank for Life and
1: Ajhi Hire Mini LED TV Line और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।

0: This program was brought to you by MCB Bank for Life. It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Cool King.
3: Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
5: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैग सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन. 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार. पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड. 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं. हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज.
6: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
8: वन स्टेशन 100 FM.
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
9: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैज कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी. घर बैठे जैज कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज कैश है ना.
10: एक नॉर्मल AC इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर
11: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा. श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय.
12: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए.
0: And
5: आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
0: And
10: हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: Cool King.
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा.
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
5: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट नो वरीज. अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.

0: Cool King.
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: कि दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Cool King. चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज। अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
3: 23 से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: किसने कहा था पैसे बचा?
5: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या होगा,
6: चलेगी नहीं दौड़ेगी।
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैज कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी। घर बैठे जैज कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज कैश है ना।
9: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
10: आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
0: And
9: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.

0: This program was brought to you by and
1: tufaan hai har jeet ki pehchan hai
0: and
2: aaj hi Hire Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: Cool King.
5: Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
4: Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
2: Hire Mini LED TV ke saath 3 mahine ki tap match subscription bhi. With free installation, 144 hertz picture quality, jandar. Banaye har match ko shandar. Powerful KEF British speakers aur woofers ka amazing sound. Kare aapko excitement se surround. 3-year warranty aur 6-month free replacement ke saath. Aaj hi Hire Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye. Hire. More creation, more possibilities.
6: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
7: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, No Worries.
8: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
10: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैज कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी. घर बैठे जैज कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज कैश है ना.
11: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
12: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाब सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाब सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
11: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैज कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैज कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज कैश है ना।
2: This program is brought to you by
3: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
4: FM 100 100, 100.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो मेरी जमीन फराख है तो मेरी ही इबादत करो। हर शख्स मौत का मजा चखने वाला है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम बहिश्त के ऊंचे ऊंचे महलों में जगह देंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा इनमें रहेंगे। नेक अमल करने वालों का ये खूब बदला है, जो सबर करते और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। सूरह अनकबूत।

0: क्या। अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैज कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैज कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज कैश है ना।
2: This program is brought to you by
3: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.

0: Your location for maximum music.
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
2: This program is brought to you by
3: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैज कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैज कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज कैश है ना।
3: This program is brought to you by
4: Hyrecan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
5: The sound blaster. The music master. FM 100.
6: Call me.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
1: One Station, 100 FM.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैज कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी। घर बैठे जैज कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज कैश है ना।
3: This program is brought to you by
4: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
5: The Heartbeat of Pakistan This is FM 100

अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।

0: Solid 100 FM.
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैज कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैज कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज कैश है ना.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
4: आप सुन रहे हैं FM 100।

0: Thali.
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक

0: This is FM 100.
1: FM 100. 100. 100.
2: 100. 100. 100. 100. 100. Assalamualaikum Pakistan.
3: अजान फजर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज फजर का वक्त हो गया है।